0: रखनी सचे पातशाह जी महाराज।
1: गरीब निवाज अंतर जामे सचे पातशाह जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी हो। आप जी के पावन हस्थान सचखंड दरबार दाजरी भरते हुए आप जी कृपा बाणी का सत्कार करते हुए बेअंत गुरमुखा प्यारिया वालों शब्द भेट माया हाजिर हुई है। सच्चे पातशाह नाम नानसके दान की बख्शिश करनी गुरसिखी जीवन बख्श नाम देह आरोपता समूह संगतान दिया मनोकामनाएं पूर्ण करने नाम बाणी नाल प्यार चुना जिधर प्रवान करनी

घनेरे सुचिया पाए दिशा बिन से बाप घनेरे पैसे पड़े मगर कोई तारे वाली पैसे पड़े मगर कोई तारे वाली पाहे पारे उतारे पाहे पारे उतारे सचिया पाए दिशा

नानक साहब तेरी वड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जा ने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

जी गुरु गरीब निवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी के पावन स्थान दी हाजरियां पर देव गुरु कियां संगतां वल्लों गुरबाणी के कीर्तन सत्कार करते हुए बेअंत माया अरदास कराई पातशाह सतगुरु आप नाम जानी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे रुकता दे नाम दी दात करनी।

हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब

कई कोक का बभणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूं कथत ही सो पुराण कई अग्नहोत्र करंत कई उर्ध ताप दुरंत कई उर्ध बाहु संन्यास कहूं चोक भेष उदास

जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि चित्ते हरि नभे हरि इहां हरि उहां हरि जिमि हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अदुख हरि।

अजात हरिय, पात हरिय, मित्र हरिय, मात हरिय, रोग हरिय, शोक हरिय, भरम हरिय, कर्म हरि। अजय हरिय, भय हरिय, भेद हरिय, छेद हरिय, खंड हरिय, भंड हरिय, दंड।

ब्रह्मस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु वं रटस्तु वं षटस्तु वं जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु

आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। कित कछ मछ कित उनको करत भज कित अच वच हो।

अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप दयाना संतुट तेज अनघुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जगत करता सदीव हरता सनाद आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं।

भेवनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेजमानी है, सदीव सिद्ध शुद्ध दा, प्रताप पत्र जानी है, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अदोग दाग दग है, अभूत भ्रम फेक है, न तात मात जात है, न पात चिहन वरण है, अदेक सेक फेक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्व भरण है, जिमी जमान के विके सदीव करम भरम है, अद्वैक है, अभेक है, अलेख नाथ जानी है, सदीव सर्वठौर में विशेख अन्न मानी है, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, गंज आद देव है कहो सु कैसे पाइये, जिमी जमान के विके समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानी है, मकीन यो मकान अप्रमान तेज मानी है, न देह है न गेह है, न जात है न बात है, न मंत्र है न मित्र है, न तात है न मात है, न अंग है न रंग है, न संग है न साथ है, न दुख है न दाग है, न द्वैक है न देह है, न सिंह है न चार है, न राव है न रंग है, न मान है न मौत है, न साक है न संक है, न जश है न गंधर्व है, न नर है न नार है, न चोर है न साव है, न साह को कुमार है, न नेह न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है, न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है न रंग है, न रूप है न रेख है, न कर्म है न धर्म है, अजन्म है अभेक है, न तात है न मात है, अख्याल खंड रूप है, अचेद है अभेद है, न रंग है न भूप है, परे है पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेक है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलिय रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन वरण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम भिज है, सदा छिज तेज मानिए, न आद है, न व्याद है, अकाद रूप लेखिए, दुख है, अदाग है, अच्छे प्रताप पेखिए, न कर्म है, न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है, न गाद है, न व्याद को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा, अगस्त आद जे बडे तपस्तपे विशेखिय, बेअंत ब्यंत ब्यंत को करंत पाठ पेखिय, अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए, सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह तुर

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनात अगाध पुरक सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरक अपार हस्त कीट बिखय बस सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखय रमे जय चक्र चिहन।

सोद सोद हटे सब हजुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागव गर्द गाढ़ अनंत हार हार कहे सब मिल नाम नाम दुरंत भेद भेद न पाये लखियो न सेवक देव देव दानो मूड मानो जस न जाने जेब भूत भव भवान भूपत आदनाथ अनाथ अगन बाजले थले मैं सर्व ठौर निवास।

पार भूमका जले तले महिमान्ये जह नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट करता श्रेष्ठ हर्ता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु गालक दीन।

सर्व भोक्ता सर्व जोक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दोष हर्ता विश्व भर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम काज लेथले मह जपत जाप अमंड सृष्टि चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेवना पावे शिव रुद्र मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय थके सफाय गुण चक्रत भे मुख चार आध अंत न मध जा को भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीया कल युग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुर गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे निपाइये तह पार नारद आदक भेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सफाय कर कोट कष्ट तुरंत गाय गाय थके

दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आद वृत्ते चरा सुर मारण पति दोधारण नरक निवारण गूढ़ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन रमक परदन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदुन सन मैक मथे दान प्रहारन नरक निवारण नदम उदारण ऊर्ध दे जय जय हो सीमा खा सुर मर्दन रमक परदन आद वृत्ते डावरूडवंगे बबरबंगे भुजा फरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके मुखन दमके अत्से जमके पुंग फनंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंडे अखंडन कून किते दामनी दमंकन धुजा परंकन फणी पुंकारण जोत जिते सरधार विवरखन दुष्ट प्रकरखन पुष्ट प्रहरखन दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा कासर उर्धे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध ब्रह्माचन हृदय नाचन धनम वृत्ते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी मैं का सुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओघ निवारण दुष प्रजा

सीमांखा सुरमर्दन भूमाकाश पताल जलं चाचर चमकारण छिछुर हारण धूम धुंगारण द्रभ मथे दाढ़ विप्रतंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय उसी मैखा सुरमर्दन भरम विनाशन धरन धुजे गुंगुरु गमंकण सहस्रज मंकण फणियर पुंकारण धरम धुजे अष्टाढ़ प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणास

संकटे निवारण न धमोदारण तेज प्रकरखण तुंद दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध छे शुद्धता समर्पण तक वितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय उसी सहस्र प्रकरखण आद अनिल अगाध भे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद तंके क्रूर कथे जय जय ओसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन वृतन विमोचन सोच बिसोचन कौज कसे दामनी ब्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्कर से चंचला ब्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय ओसी मैं खासुर मर्दन आद अनाद का दुर्धंग घंट का विराजे रुण सुन बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल विग बाजे सुकूप राजे मध्य उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिज्जे सब न भज्जे रूह रणंग जय जय हुसी मै खासुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोस रोदन क्रूर प्रत्ये दुमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पाजे अंते शत्रु मथंते दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मै खासुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खत्रियाण खतंगी अभय अभंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रिटलाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृत्ते सुर नर प्रति पारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय उसी मैं खासुर मर्दन विश्व विजन संसृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदरखण पितल तले अष्टायत बाहन बोल निवाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आद अनाथ अगाध वृत्ते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रदक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्नाहे दुष प्रदाहे अर्दल गाहे दुख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ

जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर दया वै भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सब सरण्या वै पाए सके नहीं पार प्रभा हूं को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हूँ मिल गायो वेद कतेव न भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जय को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सब पचहारे भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग त्यारे याद नाता गाता पेगत वैख जप्यो दिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष बोधन के धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल बजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छिद छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महा सतरण के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर गर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना कि तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरके फिरंगी माने कंधारी गुजर जाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है मरट्टा मंगल तेरे मन सो तपस्या करे दृढ़ वैद रंग पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आगे में चलत है रोह के रोहेले माग देश के मंगेले वीर बंग से बंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे जिन मशीन के शीश न्यावे दिब तिधे आए दुख देह के दलत है जिन्हें तोहे जायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अवेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है पाइय न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहि चिट्ठी की जिंगार पहले ही सुनियत है कित इंद्र द्वार कितने ब्रह्मा मुख चार कितने कृष्णा अवतार कितने राम कहियत है कित ससरासी कितने सूरज प्रकाश कितने मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है कित महाधीन कितने व्यास से प्रवीण कितने कुमेर कुलीन कितने जच कहियत है करते हैं विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताहित अपार निराधार लहियत है पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै अपार के बखानी है अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी के मानी है जंत्र हूं न जात जा के बाप हूं न मायता के पूर्ण प्रभा के सुछटा के अन मानी है तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को खर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के खातना की शान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमद को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को उपहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को निंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को बोकत है के वृद्धता की बासी है जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूं को खर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान को देवैया है जंजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है मही पन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को वर्ण है के अपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पारावार हूं को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हल विद्याव पूर्वी न पार पावे असत अनास है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवनाद अद्वै अविनाशी है
अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है क सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब काल इंद्र के कुल के हंस निश सिंहा रूम ही रसी हो सन्ना बाद गंगा कैसी धार चले सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा से चंदेरी कोट चांदनी से चांदागढ़ की रत तिहारे रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी शशि सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा से चंद्रगिर चांदनी सी चंदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान से बिलंदाबाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के प्रदंगी तेरे गीत गायत है फकरी कंधारी गोर गखरी कर दे जाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं बिराजे जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र।

से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन हर निर्भव त्याया जी, तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से

कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणघाता,

चत्र चक्रवर्ते चतार चक्र भुगते स्वयंभ सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग परनासे दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते देख ते को फतेह नुसरत पेदरंग आप तज अज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख जी सहाय दरबार में तुर दरबारा सच खन वसै निरंकारा लक्ष्मी खड़े तुमरे दरबारा सर्व ज्योति एक नमस्कारा दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी ओरन गुर आता जग मग

खंडा पृथ्वी साज कै जिन सब सहसार उपाया ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुद रति दा खेल रचाए बनाया सिंध परपद मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया सृजे दानो देवते तिन अंदर बाद रचाया तै ही दुर्गा साज कै दैतांता नाश कराया तैथों ही बलराम लै नाल बाणा दै सुरकाया तैथों ही बल कृष्ण लै कांस केसी पकड़ गिराया बड़े बड़े मुन देवते कई जुगत नी तनताया किनी तेरा अंत ना पाया साधु सतयुग बीतया अतशीली त्रेता आया नची गल सरोसरी करनार डबरू आया अभमान उतारन देवतया मैं कासुर सुंड पाया जीत लए तिन देवते ते लोकी राज कमाया वड्डा वीर अखाए कै सिर उपर छत्र फिराया दिता इंद्र निकाल कै तिन गिर कै ला सतकाया डर कै हथों दानवी दिल अंदर त्रास वधाया पास दुर्गा दे इंद्र आया पौड़ी एक दिहाड़े नामण आई दुर्ग शाह इंद्र बिरथा सुनाई अपने हाल दी छीन लई ठकुराई साते दानवी लोकी दी फिराई दोही अपनी बैठे बाए वधाई दे अमरावती दिते देव भजाई सबना राक्षां किनै न जिता जाई महखे दैत नू तेरी सामत काई देवी दुर्ग शाह पौड़ी दुर्गा बैन सुनंदी हसी हड़हड़ाए ओही सी हो मंगाया राक्षस पखना चिंता करहो ना काई देवानू आखिया रो होई महामाई राक्षस मारने दोहरा राक्ष आए रोहले खेत भिणन के चाए लश्कन ते गांबरचियां सूरज नदर ना पाए पौड़ी वांक दारा मोए जुड़े ढोल संघ नगारे बजे राक्ष आए रोहले तलवारी बख्तर सज्जे जुटे सौ

दादर जो दिन रैन रटे सो बिहंग उड़ैत न पंख लगाए श्याम बनै संसबै बिन प्रेम कहु ब्रज नाथ रिझाए लालच जो तन के किन हो जो पै गाए भलै प्रभ गीत सुनायो नाच नचियो न खचियो तै मैं हर लोक अलोको पैन न पायो हास करियो जग मैं अपनो सुपने हो न ज्ञान को तद जनायो प्रेम बिना कब श्याम भनै कर काहू के मैं ब्रज नायक आयो हार चले ग्रह आपने कहो बनमो बहुतो तिन ध्यान लगाए सिद्ध समाध गात का मोन खोज रहे हर हाथ नाए श्याम भनै सब भेद कते बन संतन के मतियों ठहराए भागत है कब संत सुनो जय प्रेम किए तिन श्रीपत पाए सवैया क्षत्री को पूत हाँ बामन को नह कै तप आवत है जो करो

जब आओ की औद निदान बने अत हिरण में तब जूझ मरो दोहरा। सत्रह सह पै ताल में सावन सुथित दीप नगर पामटा शुभ करण जमुना वह समीप दोहरा। दसम कथा भाग गौत की भाखा करी बनाए अवर बासना नाहे प्रभ धर्म जुत के चाय सवैया। धन जियो तै को जग में मुखते हर चित में जुत विचार देह नित न नित रह जस नाव चढ़े पोसा गुरदार। धीरज धाम बनाए ए है तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जिया रह। ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै कातरता कुदवार बुहार है। एत श्री दसम सिकंद पुराणे बचित नट ग्रंथे कृष्णा अवतार ध्याय समाप्त।

सवैया शानदार। पाप समूह विनाशन का कल की अवतार कहा वहेंगे, तुर काछ तुरंग सिपाच बड़ो कल काड़ कृपान कपा वेंगे, निकसे जिम के हर परबते ता सोब जवालय पावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, रूप अनूप स्वरूप मां अलख देव देव लजावेंगे, अर मार सुधार के टार कनु बवरु कल धर्म जलावेंगे, सब साध उबार दह कर दह दुख आँच न लगन पावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, दानव मार अपार बड़े रणजीत निशान बजावेंगे, खलडार हजार करोड़ किते कल के कल कृत बटावेंगे, प्रकट है जित ही ते धर्म दशा लग पापन पुंज परावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, चीन महा दिन दिज तीन दशा लग दीन दयाल रसावेंगे, खड़ग काठ भंग निसंग हटी रण रंग तुरंग नचावेंगे, रिप जीत अजीत अपीत बड़े अवनी पिस बह जस गावेंगे, पल भाग पया ए संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, से सुरेश महेश गणेश निशेष भले तिसका वहेंगे, गण भूत प्रेत पिशाच परी जय सद नद ना पेंगे, नर नर तुम्बर किन्नर जच सो बीन प्रबीन बजावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जीवन मंदिर आवेंगे, ताल मृदंग मुचंग पंग सुरंग से नाद सुना वह सुना वहेंगे, डाफ बार तरंग रबाब तुरी रण संख असंख बजावेंगे, गण धुंध ढोलन घोर कनी सुन सत्र सवै मुरछावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जीवन मंदिर आवेंगे, तीर्थ फंक मान सुरंग दुरंग निखंग सुहावेंगे, बरछियर बैरख बाण तुजा पट बात लगे फहरावेंगे, गण जच भुजंग सो किन्नर सिद्ध प्रसिद्ध सबै जसगावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, कौच कृपान कटारी कमान सुरंग निखंग छकावेंगे, बरछी अर टहाल कदावर सो कर सूल त्रसूल प्रवावेंगे, अध क्रोधत वह रण मूर्धन मो सर ओग प्रोग जलावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, तेज प्रचंड अखंड मां शब दुर्जन देख परावेंगे, जिम पौन प्रचंड बह पतवा सब आपन ही उड़ जावेंगे, बड़ है जित ही ते धर्म दिशा कहूं पाप ना ढूंढत पावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदिर आवेंगे, शूरत मानक मानन के रण छाड़ भटवा पैरावेंगे, गण वीर बिताल कराल प्रभा रण मूर्धन मध सुवावेंगे, गण सिद्ध प्रसिद्ध सनिध सने कर उचाई कह कृष्णावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जूर मंदिर आवेंगे, रूप अनूप स्वरूप रंग देख अनंग लजावेंगे, पव भूत पविख भवान सदा सब ठौर सब ठहरावेंगे, पव भार पा निवारण को कल की अवतार गावेंगे, पल भाग पया ए संभल के हर जूहर मंदिर आवेंगे, भूम को भार उतार बड़े बड़ी आश बड़ी छपावेंगे, खाल टार जुजार परियार हटी कहान घोखन जू गहरावेंगे, कल नारद भूत पिशाच परी जय पथ सुनावेंगे, पल भाग पे संभल के हर जूर मंदिर आवेंगे, चहार किरपान जुझार बड़े रण मद मा छपावेंगे, तार लोथ पलोथ बिथार कणी कान की घट ज्यों कहरावेंगे, चतुनान रुद चरा चे जय सत नद सुनावेंगे, पल भाग पे संभल के हर जूर मंदिर आवेंगे, तार प्रमाण उचान तुजा लख देव देव तरसावेंगे, गल की गज गा गदा बरछी गह पाण किरपाण प्रमावेंगे, जग पाप समूह विनाशन काओ कल की कल धर्म जलावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जूर मंदिर आवेंगे, पान कृपान जान पुजा रण रूप मान दिखावेंगे, प्रतमान सुजान प्रमाण प्रभा लख प्योम विमान जावेंगे, गण भूत पिशाच प्रेत परी मिल जीत का गीत गवावेंगे, पल भाग पया संभल के हर जूर मंदिर आवेंगे, बाजत डंक अतंक समय रण रंग तुरंग नचावेंगे, कसबान कमान गदा बरछी कर सूल त्रिसूर प्रमावेंगे, गण देव अदेव साच परी रण देव सबै रहसावेंगे, पल भाग भया ए संभल के हर जू हर

दोहरा माँ काल की जय। शरद परे सो लय बचाए, और ना उपजा दूसर जग पछे उस बै बनाए। जय पूजा सकेत की नित प्रत करै बनाए, तिन पर अपनो हाथ दै आस तुज लेत बचाए। चौपई दुष्ट दैत कछ बात ना जानी, महाकाल तन पुन रिष्ठानी। बल अप बल अपनो ना बिचारा, गर्भठान जे बहुत बौहर हंकारा। रे रे काल फूल जिन जाहो, बौर आन संग्राम चाहो। एक निदान करो रणमाही, कह अस तुजित कह दानव नाही। एक पावता युद्ध ना भाजा, महाराज दैतन का राजा। आता गीत गगन लै गए, बात बिसिख तो हट पाए। असुर अमित रण बाण चलाए, निर्गज खड़क तुज काट गिराए। बीस सहंत्र असुर परबाना, श्री अस तुझ छाड़े बिदनाना। महाकाल पुन जी मैं कोपा, तनुख टंकोर बहुर रण रूपा। एक मान ते तुझै गिरायो, द्वितीया सत्र को शीस डायो। दो बिसिक कर द्वैर अति चक्र, काट दए छिन एक मैं बकर। चारे बाण चार हूं बाजा, मार दए सब जके राजा। बर असुर का गाड समाथा, श्री अस के जगत के नाथा। द्वितीय बाण सौ दो हर कर, काट दयो अस तुझ नर नाहर। पुनरा छस का काटा सीसा, श्री अस के जगत के ईसा। पौपन ब्रिष्ट गगन ते पई, सब हिन आन बधाई दई। धान्य धान्य लोगन के राजा, दुष्टन दा गरीब निवाजा। अखल पवन के सृजन हारे, दास जान मुले हुबारे। कवियो बाज बिनती जाओ पई, हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतबारा, हमरे दुष्ट सुबह तुम कावा हो। आप हाथ दै मोहे बचावा हो, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सुबह करतारा, मोह रक्षा निज कर दै करिया। सब वैरण कौ आस संगरिया, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सेख हमारे तारिया। चुन चुन सत्र हमारे मारिया, आप हाथ है मुझे वरिया। मरण काल का त्रास निवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा। श्री अस तू जीव करियो रक्षा, राख लियो मैं रखन हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता। तुमो उपरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा अवतरा। काल पाए शिव जीव अवतरा, काल पाए कर विषम प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जूथियो, जमन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो। देव दैत छन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी। सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिवकन को सबगन सुख दियो। सतरन को पल मुबत कियो, कट कट के अंतर की जानत। भले बरे की पीर पिछानत, चिटी ते कुंचर अस्तूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछाने। घट घट के पट पट की जाने, जब उद करक करा करतारा। प्रजा तरत तब देह पारा, जब अकरक करत हूँ कब हूँ। तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे। आप आपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल नाद संभ, ताका मूढ़ चारत भेदा। जा को भेव न पावत भेदा, ताको कृपाहन अनमारत। महा मूढ़ कछ भेद न जानत, महा देव का कह सदा शिव। निरंकार का चीनत न भेव, आप अपनी बुध है। जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती, तुमरा लखान।

रक्षा हुए ताई जबकाला, दुष्ट अरिष्ट ट्रै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट छाछ वैस कह न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल पांचते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो बारी, सर्ब ठार मोह सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिया